0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
0: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
1: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
0: ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
0: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
1: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
0: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन,
1: ट्रेन, ट्रेन, ट्रेन। बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
0: जी,
1: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
0: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे, 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
1: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
0: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
1: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओ कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
0: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
1: हटिए सामने से। खैर श्रोताओं, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
0: जी,
1: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजीन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
0: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
1: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
0: जी,
1: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
0: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
1: आशुताओ, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
0: जी,
1: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
0: जी,
1: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
0: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
1: तो श्रोताओ, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
0: जी,
1: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
0: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी।

0: बन गई है।
1: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
0: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
1: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
0: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
1: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: దీక్ష డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాట్ టు యూ బై ది నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్.
1: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. शीर्षक है चतुर मूर्ख.
2: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए.
1: चतुर मूर्ख.
3: तीन मूर्ख थे. वे कहीं जा रहे थे. रास्ते में ही रात हो गई. वे पास के एक गांव में रुक गए. उन्हें भूख भी लगी थी. मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई. तीनों ने मिलकर खीर बनाई. भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई. बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई. बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा. तीनों लेट गए. वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे. दो तो जल्दी सो गए.

0: तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
1: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
0: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
2: अरे उठो,
3: अरे उठो,
4: उठो, उठो,
3: अरे उठो।
5: बैग बैग के पैक, बैग बैग।
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
3: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
2: अच्छा?
3: हाँ। परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह।
0: दूसरे ने कहा,
6: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा।

0: क्या करते? मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था, बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था।
1: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
2: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया। उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
3: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
2: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई?

0: अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
1: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
0: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ,
2: क्या
0: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
1: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: खीर खाए तुम?
4: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
6: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
3: तुम झूठ बोलते हो।
5: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
6: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
4: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
7: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू डिलिबरेट ऑन द प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किये। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోలో సమయం 12:05. చైతన్య స్ఫూర్తి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అంటోంది మీ రేడియో సఖి అనుపమ. 18 సంవత్సరాల వయసున్న అబ్బాయి చలాకీగా చెంగు చెంగున జీవితంలోని ఆనందాన్ని పరుగులు పెడుతూ ఆస్వాదిస్తాడు. అవునా, ఆ వయసలాంటిది. హరివిల్లులోని 7 రంగుల్ని ఆకాశాన్నంటి తాకే సత్తా గల వయసు కూడా. కాని అదే 18 సంవత్సరాల వయసులో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగి ఒక కాలు కోల్పోతేనో? జీవితం ఆగిపోతుంది కదా, అది కొందరి ఆలోచన. మరి భవిన్ గోయల్ మాట వేరే, కథ వేరే. ఎవరి భవిన్ గోయల్? ఏం జరిగింది? అతని కథ ఏంటి? మాట్లాడుకుందాం.

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। ममता जी आपसे एक सवाल कि आप अकेले अकेले कहाँ गई थी?
1: अरे जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे, माइक भी ऑन है।
2: अरे तो बताना तो चाहिए ना सबको।
1: लेकिन हम नहीं बताना चाहते ना।
2: अरे क्यों नहीं बताना चाहते? इतने फायदे हैं उसके ममता जी।
1: नहीं नहीं नहीं
2: बता,
1: कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं।
2: अच्छा?
1: लेकिन बस चलिए आपने अब खुलासा कर ही दिया, राज खुल गया है, तो हम बता देते हैं सबको कि अमूमन यही होता है, हम कुछ बातें छुपाते हैं लोगों से और खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। भला खुद कहीं छुपा पाता है कोई बात? अब हम राज खोल देते हैं। दरअसल सोलो ट्रिप पर जाने की बात है, हम कई बार अकेले अकेले चले जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अकेले जाने का प्लान बनाना मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और घर वाले तो जैसे बताओ कि सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान है तो घर वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं, अरे
2: कैसे जाओगी,
1: कैसे जाओगी, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों की फेहरिस्त, और अंदर अंदर उनको कुछ घबराहट भी होती है कि अभी अकेले अकेले पैर पसार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बगावती हो जाएगी। तो ये जो महिलाओं के साथ होता है कि सोलो ट्रिप पर जाने की बात जैसी महिलाएं करती हैं वैसे ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी सोलो ट्रिप पर जाती हैं आजकल
2: और जा रही है, और खासकर युवाओं में ये बहुत चलन हो गया है और होना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है जब हम अपने पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ या घर वालों के साथ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि हम मोबाइल में या बातचीत में लगे रहते, पर जब
1: चक्र में लगे रहते हैं एक दूसरे के,
2: पर जब हम अकेले जाते हैं तब हम बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं कि हमें कैसे टिकट खरीदना है, हमें कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़ना है, अगर बस से जाना है तो किस स्टॉप पे हमें उतरना है, इस तरह की कई कई सारी बातें हैं। अकेले जाना है तो किस तरह से हमें होटल बुक करना है, किस तरह से हमें खाने का बंदोबस्त करना है, और ये महिलाओं को बहुत अच्छा अनुभव देता है। हर महिला को ही सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो रोजगार करती हैं, बाकायदा नौकरी पेशे वाली होती है, लेकिन वो भी जब कहीं घूमने जाती हैं तो देखा है कि पति पिता या भाइयों पर डिपेंडेंट रहती हैं, और जहां जहां गए कई बार तो घर वाले पूछते भी कि ये कौन सी जगह, तो पता चला उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता उसके बारे में, कभी खोज भी नहीं करती। जब आप अकेले घूमने के लिए जाती हैं तो पहले तो बहुत रिसर्च करती हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है और उन जगहों का क्या इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में जानना, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और एक ये अलौकिक सा अनुभव होता है।
2: इस विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं ने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कोई भी, तो हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि जाना चाहिए या जाना है तो किस तरह से हमें सावधानी भी बरतना चाहिए।
1: और साथ में सोनाली जी उन महिलाओं से भी कहेंगे कि जो सोलो ट्रिप पर जाना चाहती हैं लेकिन अब तक नहीं गई, उन पुरुषों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखे कि सोलो ट्रिप पर जाने का कैसा अनुभव रहा, अच्छा बुरा, और जो वहां पर आपने देखा क्या पाया जाना लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: जी साथ ही सखी विशेष में मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टैफ ट्रैक्टर की, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है ममता जी, हल्की फुल्की बातें, इसमें आंटी मत का होना, जो हर महिलाओं को इसका थोड़ा सा दुख होता है कि अपने से जब छोटी उम्र के हमें आंटी कहते हैं तब दुख होता है। अगर बच्चों ने, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे, उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो भाई साहब होते हैं वो आंटी कहते हैं तो तब तो इतना दुख होता है कि
1: कई बार लोग अपनी उम्र को छुपाने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए भी सामने वाले को आंटी कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े हैं। और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो ये बुरा तो लगता है। तो आपके साथ मतलब श्रोताओं के साथ क्या हुआ?
2: और कि श्रोताओं किसी ने कहा जी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में।
1: अच्छा तो भाई ये वाला विषय हमें लगता है उन्हें ज्यादा मन भाया क्या? वो सोलो ट्रिप वाली बात जची नहीं या उनका अनुभव नहीं है? होगा तो अनुभव, शायद छुपा भी रहे होंगे,
2: शायद लिखेंगे।
1: हाँ और जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो तो अक्सर सोलो ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, परिवार के साथ नहीं।
2: उन्हें तो, अच्छा लगता है।
1: हाँ, तो आप अपने बच्चों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और मुहावरों की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है। तो आज का जो मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, इस पर आप सबकी क्या राय है? और हमारी तो अब ये राय है कि हम सुनवाते गाना।

0: तो ममता जी, आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और टैफ भारत के प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। मल्लिका श्रीनिवासन ने विमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से एमबीए किया।
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई वे, और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया। और शुरुआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा, क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को समझा, उत्पादों में सुधार करने और तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया है।
1: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
0: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का।
1: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: ट्रिप पर पिछले दिनों?
1: ममता जी, मैंने पढ़ा है, सुना है,
0: हाँ,
1: और आपके बारे में भी पढ़ा है,
0: हाँ,
1: और मैं भी सोच रही हूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही।
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते अकेले जाने की,
1: पर मन में बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं, वहाँ की जानकारियां बटोर कर ले आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं। और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहाँ लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है। पर एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती है।
0: मन से आप प्रसन्न होती हैं। आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना चाहिए?
1: पुरुष तो जाते ही ममता जी।
0: बिल्कुल, भले ही महिलाएं अमूमन नहीं जाती, डरती रहती हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है, और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है, फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं, और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आप अपने घर से तो अकेली निकलती हैं,
1: वहां महिलाओं मिल जाता है,
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है, लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको, उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते हैं।
1: यानी बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक साथी ने कहा है कि एकल यात्रा बड़ा रोचक तथ्य मुद्दा है। हम तो रेल से अकेले यात्रा करते थे, गोवा से पनवेल तक हमने यात्रा की है। हमारे घर वाले तो गांव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता तो आश्चर्य हुआ उन्हें। हमारी दादी, बुआ और नानी तो सफर में साथ नहीं देती, तो हमें तो रेल से मुंबई से सूरत तक एकल यात्रा करना पड़ा, बड़ा अच्छा लगा।
0: क्या बात है, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये, इन्होंने लिखा है कि सोलो ट्रिप बैंगलोर हैदराबाद का किया हमने, इससे इसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। हमेशा सावधान सतर्क रहना पड़ता है, ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही कम हो न जाएं, अच्छे होटल चुने और जाएं जरूर। बिल्कुल, वो तो आपको अपनी सुरक्षा और सावधानी का ख्याल रखना ही चाहिए, वो तो आप जब जिस शहर में रह रही हैं वहां जब घर से निकलती हैं तो हमेशा सजगता तो आपको बरतनी ही पड़ती है।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि मेरी बेटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्हें देश विदेश घूमना बहुत पसंद है, मेरे दामाद जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए जब छुट्टियां होती हैं तो हफ्ते में 10 दिन का प्रोग्राम बना लेती है और अकेली ही कुछ ऐसे ही सहेलियां मिलकर घूमने निकल लेती है। एक बेटी है जो 10वीं क्लास में है, उसके लिए हम लोगों को या फिर अपने सास ससुर को बुला लेती है, विदेशों में जाकर कार हायर करके अकेली ही निकल जाती है घूमने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यानी आपकी बात से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए ऐसे अकेले भी महिलाएं जा सकती है, हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और बड़े धैर्य के साथ हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं
0: और आप निडर बनते हैं इसी बहाने। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मात्र 16 बरस का था जब अकेला जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया था। सच मानिए मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये मेरे जीवन में एकल यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव था। कई बार जब खास तौर से लड़कियां घर से निकलती हैं तो माता पिता का हाल बुरा होता है डर के मारे, यहाँ तक कि मान लीजिए ट्रेन से जा रही हैं तो परिवार के लोग उन्हें पहुंचाने आते हैं, छोड़ने आते हैं, और ट्रेन में अगल बगल के लोगों को बाकायदा परिचय करेंगे, बताएंगे कि मेरी बेटी अकेली जा रही, जरा आप ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि जो जो आपके अगल बगल बैठे उन्हें तो ठीक है सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन बाकी जनता भी जान जाती है कि ये अकेली जा रही है, तो इससे खतरे और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो अजनबी है आपकी कितनी मदद कर सकता है। बेहतर हो कि लड़कियों को इतनी मजबूत

0: बनाए शुरू से,
1: जी
0: इतनी ताकतवर बनाए कि ये सब समझाने की नौबत ना आए। और अकेले यात्रा करने में कोई बुराई नहीं, ये हमारा ये कहना नहीं कि आप परिवार के साथ यात्रा करना बंद कर दें, लेकिन जरूरत पड़े तो आप जरूर जाएं, और अकेले एक आध बार यात्रा करके उसका अनुभव भी लेना
1: जरूर
0: चाहिए,
1: लेना चाहिए।
0: क्योंकि अब आगे समय आपका आपका करियर का चुनाव किस तरह का है, कहाँ आप आपकी पोस्टिंग होने वाली है, कहाँ नौकरी करने जाने वाली है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत, अकेले चलने की आदत बहुत जरूरी है। कई बिजनेस परिवार में हमने देखा है कि पति रात को दो दो ढाई ढाई तीन तीन बजे तक आ रहे हैं, और बेटी की शादी आपने कर दी है, बेटी सिर्फ खिड़की के सामने खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि पति आए फिर खाना खाए। तो ये जो बांध देना है एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है कि खूंटे में बांध देना, ये स्थिति नहीं होनी
1: यानी
0: चाहिए।
1: हर रिश्ते में स्पेस जरूरी है,
0: बिल्कुल
1: स्पेस होना चाहिए। एक हमारे साथी ने कहा ममता जी कि भले आज टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं तो को, जहां तक कि नए कपल को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है।
0: ये तो वही बात हो गई कि आप दिन रात डर डर के जी रहे हैं, फिर इसके मतलब इतना डर डर के कौन जीता है, फिर तो कहीं भी रिस्क है। आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए, तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए और फिलहाल एक गाना
1: जी
0: सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सखी सहेली और सोनाली जी। देखिए, एकल ट्रिप की बात की हमने, सोलो ट्रिप की, तो बहुत सारे श्रोता जो असहमत थे सहमत हो गए हैं और इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अभी तक तो ज्यादातर सोलो ट्रिप ही की है, अपने मोबाइल से पहले से सब कुछ बुक कर लेता हूँ। जब से घर से दूर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तब से मेरी आदत बन चुकी है, कोई अनुभव नहीं साझा किया किसी ने।
1: एक साथ ही कहते कि मुझे पसंद नहीं है एकल ट्रिप, मुझे ग्रुप के साथ यात्रा करना सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। वहीं एक सखी ने लिखा है कि मैं एक बार एनसीसी के कैंप में जब 10th क्लास में थी तो स्कूल से गई थी, बहुत सारी स्कूल की सहेलियों का साथ था, माता पिता या बड़े भाई नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, बशर्ते स्कूल की टीचर्स थी, पर बहुत मजा आया। तो उन्होंने 8-10 लड़कियों के साथ ही इतना आनंद उठाया, तो जब अकेले जाएंगे तो और भी आनंद मिलेगा। सबसे ज्यादा आनंद से ज्यादा ममता जी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना तो एक अच्छा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए। यात्रा से पहले, गंतव्य तक पहुंचने से पहले वहां का मौसम, वहां के स्थानीय परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर लें, सुरक्षित क्षेत्रों की अच्छी जानकारी ले लें, वहीं पर जाएं। जहां पर सुरक्षा नहीं है वहां पर जाना, अकेले जाना तो ठीक नहीं है। हाँ, वहां जैसे सोलो ट्रिप पर निकलती है तो ग्रुप मिल जाता है तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और होटल या रहने की जगह विश्वसनीय हो, अच्छी उसके बारे में रेटिंग अच्छी हो, ऐसी जगहों पर जाएं।
1: और सोलो ट्रिप केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देने वाली यात्रा भी हो सकती है। पहली सीख है कि आत्मनिर्भरता। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें चमक दमक के पीछे वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती है। इसलिए केवल तस्वीरों से प्रभावित होकर यात्रा की योजना बनाने के बजाय वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
0: और ये भी कि जब आप अकेली जाती हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी चाहिए, और ये कि हम मैं अकेली आई हूं वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। और सोलो ट्रिप का मतलब ही परिवार या दोस्तों से दूरी बनाना नहीं होता है, कई बार ये केवल अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने का तरीका होता है, अपने लिए स्पेस निकालने का तरीका होता है, खुद से गुफ्तगू का तरीका होता है। क्योंकि अमूमन अपनी दिनचर्या में, भागदौड़ की जिंदगी में आप अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते, अपने से बात ही नहीं करते, आपके भीतर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक बातें हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब आप खाली होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, कुदरत का सान्निध्य होता है, तो आपकी विचारशीलता बढ़ती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है और खुद को समझने की आदत बनती है
1: और एक डर दूर हो जाता है ना कि अरे हम तो जा ही नहीं सकते, जो हमारे खासकर महिलाओं के मन में डर है कि हम अकेले नहीं जा सकते। तो जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, बहुत सुंदर ये दुनिया है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये यात्रा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का अवसर बन जाती है, बशर्ते रोमांच के साथ सुरक्षा और समझदारी का संतुलन बना रहना चाहिए।
0: रोमांच बस वो जो होता है कि चले गए मोबाइल लेकर और सेल्फी खींचने, पता चला एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है और नीचे घाटी है, बस सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखें। पानी में जब जाएं, किसी नदी या झरने के किनारे, तो इन बातों का ख्याल रखें क्योंकि वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बाकायदा सोलो ट्रिप पर चल सकते हैं। तो चले सोनाली जी, हम भी सोलो ट्रिप पर फिलहाल
1: दोनों मिलके सोलो ट्रिप
0: गाने के जरिए चलते हैं फिलहाल।

0: तो भाई सफर सुहाना हो यही हम उम्मीद करते हैं और सबके लिए यही शुभकामना करते हैं कि जो लोग भी सोलो ट्रिप की तैयारी कर रहे हो
1: उनका
0: तो
1: सफर
0: उनके लिए
1: सुहाना हो।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सोनाली जी, ममता जी, अकेले जाने की जो बात चल रही है, हर किसी को अकेले जाना चाहिए, जिससे मन का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या क्या होता है, हम अभी 2-3 साल पहले वहां गए थे प्रयागराज, और जब मौनी अमावस्या पड़ी तो घर से अकेले ही निकले थे और उसी रात वहां पर हादसा हो गया, तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। और हमारा उसे उस टाइम पे फोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो चुका था। देखिए भाई, ये तो जब आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप किसी हादसे के शिकार हो जाएं, जब आप, ये तो खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये इमेजिन करके जाएं कि कोई खतरा होने वाला है, हमेशा समूह में जाना अच्छा होता है।
1: उन्होंने आगे लिखा है कि 3-4 दिन तक उनका फोन बंद था और 3-4 दिनों बाद वे 500 किलोमीटर दूर गए थे, तब घर आए तो घर वालों ने राहत की सांस ली।
0: तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर अकेले जाएं, लेकिन कभी एक आध बार आपको अनुभव तो लेना चाहिए अकेले जाने का भी, कि परिवार की वजह से आप घर से निकलना ही बंद कर दें। ये है यहाँ पर मकसद सोलो ट्रिप का।
1: और सोलो ट्रिप पे अगर आप गए और वहां पर आपको किसी ने आंटी कह दिया तो कैसा लगेगा ममता
0: प्यार से सिर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे हाँ जो
1: खुश
0: जो जियो खुश रहो, यही आशीर्वाद दे देना चाहिए जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग

0: बुरा मान जाते हैं, और कि वहां पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये देखो
1: मेरे बाल इतने काले हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और मुझे मुझे कहा आपको मैं कहां से आंटी लग रही हूँ।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मजेदार है, मेरी एक छात्रा की बातें हैं, कह रही थी, वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़े थे और एक हम उम्र लड़का आकर बोला आंटी जी दो टिकट हमारे लिए भी ले लीजिए ना प्लीज। मैं बोली अंकल जी आप लाइन में खड़े हो जाइए टिकट मिल जाएगा। हंस पड़े थे लोग। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और उनसे आप आंटी कह रहे हैं।
1: एक साथी ने कहा है कि ये बड़ा ही रोचक मुद्दा है, आंटी तो उम्र दराज महिला को कहते हैं, हमारे मोहल्ले का तालाब अजमेर में घाघरा लुगड़ी पहनने वाली औरतें कुछ बच्चे आंटी कहने के पुकारते हैं, उन्हें यही कहा जाता है, हमारी माँ तो उन्हें आंटी कहने से मना करती है, उन्होंने कहा कि मौसी या भाभी जी कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला, इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूँ और वहां पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है, जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन हाँ मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य करती हैं, इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो हालत वो 40 साल की हो चुकी है लेकिन आंटी किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने आप को देखते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किससे खुद से और दूसरों से जुड़े हैं। एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ, मैंने कहा मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ, मैंने कहा तुम लोगों ने दो ही शब्द सीखे अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया, 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में चाची मामी बुआ फूफी ताई इन सबको आंटी ही कहा जाता है। आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई काफी उम्र का हो चुका है, मामी बुआ फूफी ताई चाची किसी भी उम्र की हो सकती है, हाँ मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए, उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंस कर मुस्कुरा कर स्वागत करे ना कि बुरा माने।
0: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है, तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो बुआ हो और बुद्ध क्या उम्र ना होते हुए भी मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माताजी कहते हैं, संबोधन देते हैं, माताजी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहां माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है और कुछ शहरों में जो स्कूल है कुछ स्कूल में भी विद्यालय में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है, मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों उनको भैया और दीदी कहा जाता है।
1: वही दीदी तो ताई भैया कहे इस तरह से कहे ना तो बुरा नहीं लगता, पर एकदम से सडनली कोई आंटी बोल दे तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लगता है।
0: भाभी कहने में भी कोई बुरा नहीं मानता है, जबकि कई बार बहुत बड़े उम्र के लोग आपको भाभी कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर आंटी कहने में क्यों बुरा लगता है।
1: एक साथी ने लिखा है कि अगर वयस्क महिला को आंटी बोल दिया जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अभी से उम्र दराज दिखने का या महसूस करने का एक प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब बुरा लगता है, उनके मुकाबले उसी उम्र के पुरुष को अगर अंकल कहा जाता है तब उसे जरा भी बुरा नहीं लगता, इस बारे में क्या कहेंगे।
0: बिल्कुल, अब ये हमारे श्रोताओं के विचार हैं और हम तो बस आनंदित हो रहे हैं आपकी टिप्पणियां पढ़ पढ़ कर। एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी मत कहो, सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे लेकिन इसमें उम्र और रिश्तों को लेकर हमारी सोच छिपी है। किसी को केवल उम्र के आधार पर संबोधित करने के बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही

0: अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
1: एक
0: और
1: साथी ने कहा है, मुझे भी ऐतराज है, कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ, हम आंटी उम्र के हो गए हैं, पर टीनेजर्स के ना, कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें कहे।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व और व्यवहार में बसती है। भाई ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को, तो वो भी तो ये ऐतराज करते
1: अरे ये अंकल कहाँ दिख रहा हूँ।
0: हैं। और खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं और वो अंकल कह देती हैं
1: हाँ, तो बड़ा बुरा लगता
0: तो कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल
1: अंकल कह
0: कहती
1: रहे थे।
0: हैं। तो बात तो वही हो गई। अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना
1: गीत
0: सुनवा
1: सुनते।
0: दें।

0: अब ये आंटी ना कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रही है कि बैंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहां गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
1: एक साथ ही कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूं तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची, काकी, बुआ जी, मामी, यही तो होता है
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: अच्छा, इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई, और वहां पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई हे गया। तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है, बड़ी माँ। हम
1: दीदी।
0: उत्तर प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार
1: जी,
0: में ताई मतलब
1: चाची, बड़ी
0: चाची,
1: माँ।
0: मतलब बड़ी बड़ी माँ
1: हाँ,
0: एक तरह से, मतलब जो जो चाची
1: माँ की
0: हैं,
1: जेठानी।
0: हाँ, माँ की जेठानी हुई। तो मैं सोच रही थी कि
1: हिंदी में
0: ताई
1: इतनी
0: किस
1: बड़ी
0: रिश्ते
1: दिख
0: से
1: रही।
0: कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है। तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो, मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही है, मेरा आपका क्या नाता है। तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा, तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, जहाँ का चलन है वहां का आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वहां के बारे में जानकारी ले लें, बस यही होता है।
1: एक हमारे
0: और
1: साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई लोग अंकल कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता है।
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूं तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूं, पर फिर सोचता हूं कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी हैं, हमारी एक पड़ोसी हैं जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में 2 गुना 3 गुना उम्र की रही होंगी, और उन्होंने मुझे ताई कहा था, और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा। और
1: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेदी लंका ढाए। कि एक ये जो हमने मुहावरा लिया है, इसमें आज का मुहावरा है घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे। पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते
0: अब तो
1: हैं।
0: एक गूगल नाम नाम का जो प्राणी है आपके सारा आप सारे भेद खोल देता है, तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई
1: मुझे तो ऐसा
0: देती
1: लगता
0: है
1: है कभी कभी ये हमारे मन
0: सुनते
1: का
0: हुए।
1: भी जान लेता है क्या,
0: बिल्कुल,
1: मैंने मन में कभी सोच
0: क्योंकि
1: जाए तो उसी की याद आने लगती है।
0: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो बात चली जाती है, शब्द
1: वो
0: पकड़
1: शब्द
0: लेता है।
1: पकड़ लिया तो उसी की आती। एक और
0: कई बार अलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ, तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेद

0: लंका ढाई वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, घर का भेद ही लंका ढाई बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भली भांति याद किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप ही रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे सरकार, जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
0: अब एक गाना सुने।
1: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए, और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं उस शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है। और अब भी मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूँ, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूँ, और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े।
2: जी,
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है?
2: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है, जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं, और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो 2-3 ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीच में बीचों बीच में हूं इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़कर रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मैं थिएटर भी

0: करूं जो मेरे रूट्स हैं। टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं, तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है, और उस संगम के बीचों बीच में हूँ इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतज़ार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे, और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है। हम देखते हैं बम्बई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज़्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मगर बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब अडेप्टेड प्लेज हैं। और जहाँ तक गुजराती और मराठी प्लेज का सवाल है, वहाँ भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेज से ही अडेप्टेशन हैं, अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहाँ से आए। फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहाँ चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं, वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेज ज़्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बम्बई में पृथ्वी और एनसीपी है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है। उसके अलावा कहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहाँ 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर, तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रोसीनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए, और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले। गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
1: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, मैं चाहूँगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से, और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने।

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत संगीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए, जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी, क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के, कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में, और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहाँ, आग लग गई थी, और उन यादों को लेकर हम बम्बई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा, ये सोच के बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया, और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर, और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और सीरियल ख़त्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं
1: बार बार
0: आते।
1: नहीं आते, और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में, और फिर उनके बच्चों के साथ भी था, जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस के साथ, ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था, हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कभी स्केचेस देखे कि पूर्णैया दिखता कैसा है, हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी के बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें, पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पॉन्स था ऑडियंसिस का, तो हो सकता है हमने तकरीबन तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि जो आदमी

0: उस आग से गुजर कर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा,
0: जी
1: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
0: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक एक उदाहरण देता हूं आपको।
1: जी
0: अगर आप कहेंगे कि फिल्में, फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
1: अच्छा,
0: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
1: बहुत खूबसूरत बात है।
0: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गए कि आपको उसी तरह से बोलना है, आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
1: अच्छा,
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं। आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूँ शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूँ उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहाँ एक छोटे से रोल में ले लो, वहाँ खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मज़ा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा या आपको लगा रहे मैं कहाँ फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना।
1: अच्छा।
0: जो दूसरे कैरेक्टर थे, मजा तो बहुत आया, क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो
1: हाँ।
0: उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूँ अगर मैं ये बात कह सकता हूँ, लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर, जो मंजिल फिल्म का है। रिमझिम गिरे साहब।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूँ। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं ज़रूर एक्टिंग करना चाहूँगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत ज़रूरी है कि राइट फ्रॉम पेन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूँ या डायरेक्टर पाता हूँ।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट

0: निर्देशक के रूप में जब आपने लाइट्स कैमरा एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, उसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफ़ी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने लिखी थी। और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है। उसकी फैक्ट्री सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं हैं, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूँ कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफ़ी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब बम्बई में है। हाँ,
0: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
1: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
1: आप यहाँ इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरी टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ भी नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहां मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिदा ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया।
0: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
1: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
0: जी
1: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाए थे सीरियल। और इसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो हैं वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं जो

0: यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मज़ा आया। और वहाँ मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूँ, और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मज़ा आया, और भी काफ़ी सीरियल्स थे, लेकिन शायद इसमें जो मज़ा आया वो दूसरों में नहीं।
1: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
0: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
1: वाह।

0: अनन जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है वो आदमी। शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे वो सारे कैरेक्टर्स।

0: वहाँ के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज़्यादा हंसा। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी हुई,
1: ये तो
0: ऐसा मेरा कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
0: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब
1: बिल्कुल
0: आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल
1: बिल्कुल
0: बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल्स बनाना बहुत मुश्किल है।
1: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग? आराम से जाएं सेट पर, मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना,
0: बिल्कुल
1: या फिर
0: बिल्कुल
1: पूरी
0: बिल्कुल,
1: जिम्मेदारी बोझ पर सिर
0: डायरेक्शन के
1: पर?
0: बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
1: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
0: नहीं, जितना महत्व तो हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है। तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व तो देना है वो फिल्म फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है। और जहाँ हमको एक गाना होता है वहाँ 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम।
1: जी
0: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
1: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
0: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियाँ होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है, और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
1: अच्छा आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई, जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
0: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया। लेकिन उसका फायदा ये भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज़ नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज़ को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फ़र्क आया है, और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है, क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।
2: हंसने की चाह ने

0: अनन जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है? आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार। जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता, थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया, तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे।
0: जी
1: वीडियो के बाद जब डीवीडी आए, तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविज़न पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविज़न अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविज़न के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा। नहीं, वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे। क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो

0: को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक
0: हम
1: कहा,
0: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
1: बिल्कुल। इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
0: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं। नहीं, मेरा मतलब है कि
1: हाँ?
0: ठहरिए, होश में आओ। गाना है
1: ओह
0: सुनिए।
1: अच्छा बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, ये कितनी गलतियां आपको मिलेंगी वो सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है।
0: जी
1: मैं बम्बई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से। और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि

0: उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
1: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
0: हाँ, संगीत में
1: रुचि है?
0: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फार्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीज़ों में मन लगा रहता है।
1: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
0: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो
1: बिल्कुल।
0: सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मज़ा आया, या तो ये कहें कि वाह कि दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूँगा, कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जो बहुत ही यादगार रहे।
1: अनंत जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
0: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूँ। फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूँ।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान का शहर नागोया 20वें एशियन गेम्स की मेजबानी करने के अलावा दो चीजों के लिए मशहूर है। पहले सामुराई, यानी जापान के वो पारंपरिक योद्धा जिनके शौर्य, शक्ति और संघर्ष की कहानियां इतिहास में दर्ज है, और आधुनिक जमाने में नागोया की विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां सटीकता के साथ हर नई तकनीक नई संभावनाओं का रास्ता खोल देती है। शौर्य, संघर्ष, शक्ति, सटीकता और संभावनाएं। आज मंगलवार 22 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में ये पांचों रंग दिखे। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी के मैदान में भारत ने अपनी शक्ति का बखान किया, तो वहीं आज बॉक्सिंग रिंग में भी हमारे मुक्केबाजों ने अपना शौर्य दिखाया। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और सॉफ्ट टेनिस में सफलता और संघर्ष का मिला जुला खेल रहा। स्विमिंग और शूटिंग, जहां सेकंड के कुछ हिस्से और कुछ मिलीमीटर जैसी रेजर थिन मार्जिन्स का सवाल है, वहां भारतीय खिलाड़ियों की सटीकता की परीक्षा हुई। तो एक्वेस्ट्रिन, फेंसिंग, ई स्पोर्ट्स, सेपेक टकराव और वुशू जैसे खेल जो अभी भी भारत में अपनी पहचान तलाश रहे हैं, वहां नई संभावनाओं के द्वार खुले। पूरे दिन का लेखा जोखा ले मैं दर्पंती क्या आपके समक्ष मौजूद हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत महिला क्रिकेट की, जिसने भारत को दिलाया है एशियन गेम्स 2026 में उसका पहला गोल्ड। हरमनप्रीत कौर की महिला क्रिकेट टीम से सिर्फ पोडियम फिनिश की नहीं, गोल्ड मेडल की ही उम्मीद थी। एनीथिंग लेस वुड हैव बीन एन अपसेट। लेकिन दबदबा बनाने की इस अपेक्षा के साथ उम्मीदों का वजन भी आता है, और उसके साथ आता है दबाव, और कई बार इस दबाव में अच्छे खासे खिलाड़ी बिखर जाते हैं। लेकिन आज शेफाली वर्मा और स्मृति मानधना ने कहा आज नहीं। दोनों की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। 99 रन की सलामी साझेदारी, जिसने नींव रखी एक विशाल फर्स्ट इनिंग स्कोर की। जहां शेफाली ताबड़तोड़ 48 रन बनाने के बाद आउट हो गई, तो वहीं उपकप्तान मानधना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर आई ऋचा घोष, जिन्होंने 222 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 49 रन बनाए और भारत ने श्रीलंका को 217 का टारगेट दिया। श्रीलंकाई पारी शुरुआत में ही लड़खड़ाने लगी। बल्ले से अपने जोहर दिखाने के बाद शेफाली ने गेंद से भी दो विकेट लेने में योगदान दिया। अंततः भारत ने 147 रन के बड़े मार्जिन से इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीता।
2: मेंस कबड्डी के ग्रुप ए मुकाबले में इंडिया ने अपने विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखते हुए दक्षिण कोरिया को 63-31 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। डिफेंडिंग चैंपियंस ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और ग्रुप ए में अपनी स्थिति मजबूत की। इंडिया ने शुरुआत से ही अटैक और डिफेंस दोनों में दबाव बनाया। हाफ टाइम तक इंडिया 34-14 से आगे था और उसने दो बार प्रतिद्वंदी को ऑल आउट किया। दूसरे हाफ में भी अर्जुन देशवाल, देवांग, अयान, राहुल और पवन कुमार जैसे ने स्कोरिंग जारी रखी, जबकि जयदीप, सुमित और सुनील कुमार ने डिफेंस में इंडिया की पकड़ बनाए रखी। आखिरकार इंडिया ने दूसरे हाफ में 29 पॉइंट जोड़ते हुए मुकाबला 63-31 से अपने नाम किया। पूरे मैच में इंडिया ने 3 ऑल आउट, 17 बोनस पॉइंट और 2 सुपर टैकल पॉइंट्स हासिल किए। दक्षिण कोरिया की तरफ से कैप्टन ली जांगकुन ने सुपर 10 जरूर दर्ज किया, लेकिन इंडियन टीम की लगातार अटैकिंग और डिफेंसिव प्रेशर के सामने कोरिया वापसी नहीं कर सका। इंडिया ने इस तरह ग्रुप ए में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब इंडियन मेंस टीम का अगला मुकाबला 23 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगा, जहां टीम जीत की

0: इस लय को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरेगी।
1: हॉकी की भी यही कहानी है, वहाँ गोल्ड मेडल जीतना केवल शक्ति दिखाने और साख के लिए जरूरी नहीं बल्कि ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ घटा आज हॉकी के मैदान पर, आइए सुनते हैं।
0: मेंस हॉकी में इंडिया ने आज अपने अटैकिंग अंदाज का शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। इंडिया की हॉकी टीम से इसी तरह के हैवी परफॉर्मेंस की उम्मीद हमेशा रहती है और आज मैदान पर टीम ने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरी तरह जस्टिफाई किया। पूल ए में ये इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और दो मैचेस में इंडिया अब तक 29 गोल कर चुका है। इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 8-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। दूसरे हाफ में भी अटैकिंग मोमेंटम बरकरार रहा और इंडिया ने कुल 16 गोल दागे। इस शानदार स्कोरिंग परफॉर्मेंस में जुगराज सिंह ने 4 गोल्स किए जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने भी 3-3 गोल्स के साथ हैट्रिक्स पूरी करी। और इंडिया के डिफेंसिव स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे मुकाबले में श्रीलंका को एक भी पेनल्टी कॉर्नर नहीं मिला, यानी इंडिया ने सिर्फ गोल्स के सामने नहीं बल्कि अपने डिफेंस में भी श्रीलंका पर लगातार दबाव बनाए रखा। श्रीलंका के लिए सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में एकमात्र गोल किया जो एशियन गेम्स में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका का पहला गोल भी रहा। अब इंडिया का अगला पूल ए मुकाबला 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ होगा।
1: अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग की तरफ, जहां आज चुनौती कड़ी थी। हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय मुक्केबाजों से जो उम्मीदें हैं उनका वजन भी बढ़ गया है, लेकिन दबाव में भी दमखम दिखाते हुए इंडियन बॉक्सर्स ने अपना वर्चस्व कायम रखा। सबसे पहले महिलाओं की 51 किलोग्राम की कैटेगरी, जहां साक्षी चौधरी के सामने थी पेरिस ओलंपिक्स की मेडलिस्ट फिलीपींस की आयरा विलिगास, लेकिन साक्षी ने तो मानो प्रतिद्वंदी को मौका ही नहीं दिया। शुरुआत से ही बाउट को डोमिनेट किया और अंततः सर्वसम्मति से मुकाबला जीत प्री क्वार्टर्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट वॉज जादुमणि सिंह इन द मेन्स 55 किलोग्राम कैटेगरी। ही वॉज अप अगेंस्ट नेपाल्स चंद्र बहादुर थापा एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड। जादुमणि डोमिनेटेड द फाइट एंड इवेंचुअली वॉज हेल्ड एज द बेटर बॉक्सर ऑन ऑल 5 कार्ड्स। He won his bout by a unanimous decision and made it to the pre-quarterfinals. चलिए अब बात करते हैं नई संभावनाओं की। भारत का एक और मेडल सुनिश्चित हो चुका है वुशु में। वुशु चाइनीज मार्शल आर्ट्स कुंगफू से उत्पन्न हुआ एक खेल है और इसके सांडा इवेंट में दो फाइटर्स आमने सामने होकर एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश करते हैं। भारत की रोशबीना देवी ने इस इवेंट में 2018 में कांस्य पदक और 2023 के एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। 2026 में भी उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश पा कम से कम ब्रॉन्ज पक्का कर लिया है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि सेमीफाइनल जीत वो सिल्वर और हो सके तो गोल्ड पर भी निशाना साधेंगी। इसी इवेंट में पुरुषों की 56 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के आर्यन ने भी उम्मीदें जगाई थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में उज्बेकिस्तान के सेडुला अब्दुराशिटोव के खिलाफ उनको हार मिली। वुशु में ही एक परफॉर्मेंस इवेंट भी होता है जिसको नानकुआन कहा जाता है। उसमें आज भारत की लांगलिन टोम्बी देवी शिरकत कर रही थी। हालांकि 10 खिलाड़ियों में उन्होंने 8वां स्थान प्राप्त किया और मेडल की रेस से बाहर हो गई। फाइट स्पोर्ट्स की ही बात हो रही है तो जापान में ही उत्पन्न हुआ कराटे कैसे पीछे रह सकता है।
0: जी हाँ, कराटे में इंडिया के लिए आज का दिन मेडल के बेहद करीब पहुंचकर खत्म हुआ। सबसे पहले पुरुष कुमीते 84 किलोग्राम में चेतन भट्ट ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। चेतन ने पहले सेमीफाइनल में जॉर्डन के मोहम्मद अल जफारी का सामना किया लेकिन 0-8 से हार गए। इस रिजल्ट के बाद उन्हें ब्रॉन्ज मेडल बाउट में जगह मिली। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। ब्रॉन्ज मेडल बाउट में चेतन का मुकाबला चाइनीज ताइपी के मेंग यू चूंग से हुआ। मुकाबला बेहद क्लोज रहा और दोनों एथलीट्स ने 1-1 यूको स्कोर किया जिससे फाइनल स्कोर 1-1 रहा। लेकिन इसके बाद फैसला सेंशु से हुआ। सेंशु उस एथलीट को मिलता है जिसने ओपोनेंट के स्कोर करने से पहले सबसे पहला अनकंटेस्टेड पॉइंट हासिल किया हो। चुंग ने पहला स्कोर किया था, इसलिए टाई होने पर सेंशु के आधार पर उन्हें विनर घोषित किया गया और चेतन ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए।

0: अब महिला कुमीते 55 किलो की कैटेगरी में अलीशा चौधरी को राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की चौक एस्त्री सानिस त्रयानी से 1-6 से हार मिली। अलीशा ने 1 यू को स्कोर किया जबकि सानिस त्रयानी ने 3 यू को और 1 इपोन के जरिए 6 पॉइंट्स हासिल किए। अलीशा का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 16 में समाप्त हुआ। इस तरह कराटे में इंडिया के दोनों एथलीट्स मेडल कंटेंशन में पहुंचे, लेकिन चेतन भट्ट का बेहद करीबी 1-1 ब्रॉन्ज मेडल बाउट और सेंचू का फैसला आज के मुकाबलों का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा रहा।
1: संघर्ष और सफलता का ये मिला जुला खेल बैडमिंटन कोर्ट पर भी देखने को मिला। क्वार्टर फाइनल में जहां महिलाओं की टीम को हार मिली, तो वहीं पुरुषों ने जापान की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच अपने लिए कम से कम कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। डिटेल्स बता रही हैं साक्षी मांडवाल।
2: इन बैडमिंटन द इंडियन वुमेन्स टीम कैंपेन केम टू एन एंड आफ्टर अ 1-3 लॉस टू जापान इन द क्वार्टर फाइनल्स। द फर्स्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन पीवी सिंधु and Akane Yamaguchi of Japan, where PV Sindhu, despite having won the first game, went on to lose the next two to Akane Yamaguchi. In the next match, Unnati Huda of India lost to Tomoka Miyazaki. The third match was played between Trisa Jolly and Gayatri Gopichand of India, who beat Yuki Fukushima and Mayu Matsumoto of Japan. Yet, this victory was not enough for India to be able to defeat Japan in totality. Because the last match that was played between Tanvi Sharma of India and Nozomi Okuhara of Japan, we saw Tanvi Sharma losing to her Japanese opponent. We now move on towards the men's team event in badminton quarterfinals. The first match in this was played between Lakshya Sen of India, who beat Japan's Kodai Naraoka in a very thrilling 66-minute encounter to give India a 1-0 lead in the men's team quarterfinal tie. This victory thereby set the momentum and pace for the next shuttlers who were to represent India in the second match. Because in that match also we saw India's Chirag Shetty and Satwik Ranki Reddy up against Japan's Hoki Takuro and Kobayashi, whereby they pulled out a brilliant victory from the hands of Japan by defeating them in straight games to win the match 2-0 in favor of India.
1: It was a mixed bag overall in racket sports. In table tennis, the men's team lost to South Korea, while the women defeated Thailand and made it to the quarterfinals. However, their North Korea came in their way.
2: Let's now talk about table tennis. Indian women's table tennis team beat Thailand 3-2 in a hard-fought match at the Asian Games 2026, advancing to the quarterfinals. In a dramatic turnaround in table tennis, India's Srija Akula conceded the final three games after taking a 2-0 lead early on. In the second game, India's Yashaswini Ghorpade win against Suthasini Savitabu to keep India's hopes alive. The Achitale went down in another five-setter, losing to Jineppa Savitabut of Thailand. In the fourth game, Yashaswini Ghorpade defeated Orawan Paranang. And finally, Srija Akula won a crucial match against Suthasini, help India secure the overall victory. The final scoreline read 3-2 in favour of India.
1: टीटी और बैडमिंटन के अलावा एक और रैकेट स्पोर्ट एशियन गेम्स का हिस्सा है, जहां पर भारत की पदक की उम्मीदें हैं। हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट टेनिस की।
2: आद्या तिवारी सफर्ड 1-4 डिफीट टू थाईलैंड्स अलीशा जिलगर इन द वुमेन्स सिंगल्स ग्रुप डी मैच। लेटर इन द डे इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जैमीना टुक ऑन अरेन हुसैन इन मेन्स सिंगल्स ग्रुप डी क्लैश, वेयर इंडिया बीट पाकिस्तान। जैमीना सिंपली वाज द बेटर प्लेयर अगेंस्ट पाकिस्तान अरेन हुसैन। द इंडियन टुक द मैच अवे फ्रॉम हिम कम्प्लीटली, फिनिशिंग द मैच विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-2, 4-0, 4-2, 4-0, थेरेबाय कम्प्लीटली आउट प्लेइंग हिज अपोनेंट।
1: इसके बाद रुख करते हैं फेंसिंग का।
0: फेंसिंग यानी तलवारबाजी में इंडिया के लिए दिन मिला जुला रहा, लेकिन वुमेन्स ईपी में तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 16 तक पहुंचकर सबसे लंबा सफर तय किया। चारों इंडियन फेंसर्स ने पहले अपने रिस्पेक्टिव पूल बाउट्स के जरिए नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, जिसके बाद राउंड ऑफ 32 से आगे का मुकाबला हुआ। सबसे पहले वुमेन्स ईपी, तनिक्षा खत्री ने राउंड ऑफ 32 में थाईलैंड की नाटपपात सांगनियो को 15-10 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। वहां उनका सामना हुआ साउथ कोरिया की रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सोंग सेरा से। तनिक्षा ने बड़ी चुनौती दी, लेकिन 9-15 से हार कर उनका कैंपेन समाप्त हुआ। यह भी खास है कि तनिक्षा इस साल सीनियर वुमेन्स ईपी में कॉमन

वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीत चुकी हैं। इसी कैटेगरी में मितवा चौधरी का मुकाबला चाइना की योंग जिंगवेन से बेहद करीबी रहा। मितवा ने तीनों पीरियड्स में फाइट जारी रखी, लेकिन अंत में

0: दोनों इंडियन फेंसर्स का एशियन गेम्स कैंपेन राउंड ऑफ 32 में हुआ समाप्त।
1: जहां इन खेलों में मिला जुला रिजल्ट रहा, तो वहीं स्विमिंग और शूटिंग में पदक आते आते रह गया, और बता रहे हैं अभिनव।
2: आर्यन नेहरा वॉज एन एक्शन फॉर इंडिया इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन इन द मेन्स 1500 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल बी। आर्यन ट्राइड हिज बेस्ट, स्ट्राइव्ड हार्ड, बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश्ड फोर्थ एंड केम सो क्लोज इन दैट मेन्स कॉम्पिटिशन। द इंडियन मेन्स 4x100 मीटर मेडली रिले टीम कंप्राइज ऑफ उत्कर्ष पाटिल, दानुष सुरेश, बेनेडिक्ट बेनिस्टन एंड आकाश माने। The men's team finished 7th and then qualified for the final, and there were huge expectations that they would show some outstanding performances in the pool. However, when it came to the final, the competition was fierce. It was really tough. While the Indian swimmers strived hard, they unfortunately finished last and 8th in the medley relay final. It was really tough competition for India, and it was a great experience for them, while China once again took the gold in the swimming pool.
1: फिर शूटिंग में दो सिल्वर मेडल हासिल कर लेने वाली एलावलिन वलारीवन के पास मौका था मिक्स्ड टीम में भी पार्थ माने के साथ पदक पर निशाना साधने का, पर वो चौथे पायदान पर रही।
2: द इंडियन शूटिंग पेयर ऑफ एलावलिन वलारीवन एंड पार्थ माने फिनिश्ड फोर्थ इन द 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम फाइनल एट द एशियन गेम्स 26 in Aichi Nagoya, Japan. In the qualification round, Valarivan and Parthmane shot a strong combined score of 634.6, finishing second to qualify for the medal round. However, in the medal round, the duo scored 376.3 in the final, maintaining the fourth position from the opening series and missed out on a podium finish. And as usual, as we have seen in the Asian Games, China won the gold medal with a world record score in the event. The qualification round score of the Indian athletes was the best Asian Games record. Moving on to the men's and women's skeet competition. Talking about the men's team first, after 100 shots, the Indian men saw contrasting fortunes as the individual qualification rounds progressed. A.S. Naruka is currently in second place with a total of 96 points so far, putting himself in prime position to qualify for the individual finals. Miraj Ahmed Khan is positioned further down the order at 23rd place with a total of 91 points, while Bhavdev Singh Gill is ranked 35th following a tough run of series with a total of 86. Now when we talk about the skeet men's team finals, India stood at the end of day 2 in the 5th position with a total of 273 points. Meanwhile, in the women's skeet standings, the Indian women remain in contention for the finals, led by a strong push from Raisa Dhillon. Raisa moved up significantly to 5th place in the individual standings with a total of 92 points. Parinaz Dhaliwal was positioned just outside the top tier at 9th place with a total of 89 points, while Maheshwari Chauhan currently sits at 16th place with 85 points. The Indian women's team are in third place with 266 points. A reminder that there are 125 shots in this event, and just 25 shots tomorrow will decide the team standing for both India men's and women's.
1: कुछ और खेल भी आज चर्चा का केंद्र रहे, उसके लिए चलते हैं विदुषी की तरफ।
0: आइए अन्य खेलों में सबसे पहले शुरू करते हैं सेपेक टेक्स रॉ में, जहां इंडिया के लिए आज का मुकाबला टफ रहा। मेंस टीम रीगू के ग्रुप बी में इंडिया को मलेशिया के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। चलते हैं एक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में इंडिया के प्रदर्शन के ऊपर, जहां इवेंटिंग टीम कैंपेन आज 7th पोजीशन के साथ खत्म हुआ है। टीम ड्रेसेज में इंडिया ने 112.40 पेनल्टी पॉइंट्स के साथ 7th प्लेस हासिल करा है। टीम जंपिंग में भी इंडिया का कैंपेन एलिमिनेशन के साथ समाप्त हुआ, और इस तरह टीम इवेंट में इंडिया मेडल कंटेंशन से बाहर रहा। लेकिन आशीष लिमाय का 6th प्लेस फिनिश आज इंडियन एक्वेस्ट्रियन कंटिंजेंट के लिए सबसे अहम प्रदर्शन रहा। ई स्पोर्ट्स के फुटबॉल में इंडिया का कैंपेन भी खत्म हो गया, जिनमें साहू और दानियाल शकील पटेल ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 0-0 ड्रॉ खेला, जबकि मंगोलिया के खिलाफ स्केड्यूल्ड मैच में ओपोनेंट के डीएनएस रहने से इंडिया को वॉकओवर मिला। पॉइंट्स बराबर होने के बावजूद टाई ब्रेक में उज्बेकिस्तान आगे निकल गया और इंडिया नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गया। मेडल टैली की बात करें तो इंडिया इस समय 8th पोजीशन पर है, जहां उसके खाते में कुल 7 मेडल्स हैं, जिसमें एक गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। मेडल टैली में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पहले स्थान पर है, जापान दूसरे एंड कोरिया तीसरे स्थान पर है।
1: कल एक बार फिर इसी समय हम पूरे दिन का हालचाल लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। एडिटर स्वाति कपूर और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दर्पण टिकिया।